जाना रेडियो वही रेडियो स्टेशन है जो कि 24 घंटे लगता है आपको खिदमत करते हैं हर एक रोज रात और दिन वीर बेटा उजाला रेडियो आपके हर काम काज के लिए उजाला रेडियो सही पता है चेक फॉर मेर इन्फॉर्मेशन ऑफ उजाला बिंदनेल उजाला रेडियो सुनाई देता है खुली हवाओं में काबल के जरिए ऑनलाइन उजाला रेडियो के ऐप के जरिए या तो DAB प्लस के जरिए आप सुन सकते हैं उजाला रेडियो चारी ओर जहां पर भी आप जाइए हमें साथ मिले जाइए उजाला रेडियो आपको हर एक वक्त हर एक हाल में काम आ सकता है काम में लाए उजाला रेडियो आपके साथ।

अज्ञान के अंधकार से मुक्ति देने वाला परम पिता परमेश्वर ही है। वही जगत का पालनहार है। आओ निर्मल मन से शरणागत होकर प्रार्थना करें, हे प्रभु हम भटके हुए प्राणियों को राह दिखाओ।

पूरा तोड़ दिन के देवे है तोड़ साथ, के तोड़ साथ सोते है, के तोड़ साथ जागे है, के कर साथ तू ओतो में घूमे है, और के कर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू

उजाला रेडियो देश भर में, तू जाना है तो उजाला रेडियो, उजाला ही उजाला देश भर में। हाँ, हर गांव में, हर कोना में, ओटो में, घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो, दे अबे प्लस के जरिए उजाला।

खुशी के साथ गमी है, पैदाइश के साथ मौत। उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मृत्यु समाचार आप सुनिए। आम्स्टर्डम से समस्त परिवार हीरा लाल बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए बीफे को 87 साल के आयु में जीवन तख्त ख्यार और पत्नी श्रीमती मरी हीरालाल उदयराम का पति लड़कन जूलियन और परिवार, ग्लेन और परिवार, नलिनी और परिवार, इरेन और परिवार, हैंक और परिवार, जिम और परिवार, शारदा और परिवार, जॉय और परिवार, योसेफ और परिवार, जेरी और परिवार, शर्मिला और परिवार और स्वर्गीय जॉन और परिवार के पिता आम्स्टर्डम का रहने वाला श्रीमान योसेफ चंद्रभान हीरालाल की मृत्यु आम्स्टर्डम में हो गई है। भान के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे। सूरीनाम में पहले सीदोरे जो वैखदेसा लीली दौरप का रहने वाला था। आम्स्टर्डम से समस्त परिवार हीरालाल बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए बीफे को 87 साल की आयु में जीवन तख्त ख्यार और पत्नी श्रीमती मारी हीरालाल उदयराम का पति लड़कन जूलियन और परिवार, ग्लेन और परिवार, नलिनी और परिवार, इरेन और परिवार, हैंक और परिवार, जिम और परिवार, शारदा और परिवार, जॉय और परिवार, योसेफ और परिवार, जेरी और परिवार, शर्मिला और स्वर्गीय जॉन और परिवार के पिता आम्स्टर्डम का रहने वाला श्रीमान योसेफ चंद्रभान हीरालाल के मृत्यु आम्स्टर्डम में हो गई है। इन्हें लोग भान के नाम से पहचानते और पुकारते थे। सूरीनाम में पहले लेली दौरब देसा सीधो रेजो वह का रहने वाला था। अर्थी से विदाई लेने की मौका है आने वाले बुध के रात में 7 बजे से 8 बजे तक। वुंसदाख आफंत फंजी फंतोत अख्तूर ओला जोइट के मुर्दालय फ्रेतरूस कसरात 91 आम्स्टर्डम जोइट में और अर्थी के दाह क्रिया आने वाले बीफे के दिन में 4 बजे दोंदर दखास्तांद फिर उर किए जाएंगे। वैसखार्द क्रिमाटोरियम ओक मेरवेख 275 आम्स्टर्डम उस दौरप में निवास स्थान पर बैठक नहीं किए जाते हैं। और जानकारी के लिए तार का नंबर है 06-28-41-79. सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए उजाला रेडियो समस्त परिवार हीरालाल के दुख में शामिल है।

था। उजाला रेडियो का प्रोग्राम में और मृत्यु समाचार को आप सुनिए। अम्स्टरडम से लड़कन निधान सिंह बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए बीफे को 93 साल के आयु में द्रियन नीखन तखियार और लड़कन जॉनी शॉर्सिन हेलविस रॉबी और आयरिन निधान सिंह और स्वर्गीय राजेश निधान सिंह के पिता सभी दामाद और पतों के ससुर लड़कन के नाना आजा और परनाना और स्वर्गीय श्री इवरेन पोपकी निधान सिंह झिनगूर का पति दिमनजोइत का रहने वाला श्रीमान आंद्रे निधान सिंह की मृत्यु अम्स्टरडम में हो गई है। अम्स्टरडम से सभी लड़कन निधान सिंह और परिवार बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए बीफे को 93 साल के आयु में द्रियन नीखंतखियार औत लड़कन जॉनी शॉर्सिन हेलविस रॉबी और आयरिन निधान सिंह और स्वर्गीय राजेश निधान सिंह के पिता सभी दामाद और पतों के ससुर और सभी लड़कन के नाना आजा और परनाना और स्वर्गीय श्री इरेन पोपकी निधान सिंह झिनगूर का पति दिमनजोइत का रहने वाला श्रीमान आंद्रे निधान सिंह की मृत्यु अम्स्टरडम में हो गई है। अर्थी से विदाई आप ले सकेंगे आज इतवार के दिन में 2 से 3 तक फमिदक फन त्वी तो द्री उर उत्फर्ट सेंट्रम वेस्ट खार्द के मुर्दालय ओक मेरवैग 275 अम्स्टरडम ओस डॉरप में और अर्थी के दाह क्रिया आने वाले बुध के दिन में 1 वोंसदा खांस्तांद 1 किए जाएंगे। वेस्ट खार्द क्रीमाटोरियम ओक मेरवैग 275 अम्स्टरडम ओस डॉरप में। सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए उजाला रेडियो के साथ आखिरी सफर एतवार फुरजोरखिंग समस्त परिवार निधान सिंह के दुख में शामिल है।

0: उजाला रेडियो का प्रोग्राम में अभी आप मृत्यु समाचार को सुने।
1: यू आर Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
3: Yeah, Ujala Radio. Goedemiddag allemaal. Mijn hoe lang maar hier. Een hele goede middag allemaal. Welkom bij Ujala Radio. Ik zoek Jan, af dat ik een beetje krijg. Als ik eens eetwaardige programma. Dit is Ujala Radio. Harry kan me kans krijgen. Check onze website ujala.nl. E-mail aanwezig krijgen naar info@ujala.nl. Naar Ujala. Toe Jan is toch. DAB Plus पर हॉलैंड भर में कोना कोना में तू चाहे जहां जाइए उजाला को साथ मिले जाइए और उजाला को सुनिए अच्छे से अच्छे गाने अच्छे से अच्छे बातें कम बातें और गाना ज्यादा और उजाला रेडियो तू जाने तो उजाला रेडियो के जरिए हम एक घंटे के लिए आए हैं एंड जो मेन गा एक वत न्यूज ऑफ ड्राइए फन संगर्स दी अनवेजिक सो जाइन ऑफ ब्राजा फेस मदन जो मेन जरूर सुन लेना तू जाने है तो नौ फाइव दागे तो गान हाल ये टिकट्स फॉर फेज 2 अर्ली बर्ड टिकट्स सुपर अर्ली बर्ड टिकट्स क्लियर नौ फाइव दागे हाशिए तू जल्दी कर Ja, draai daarin akker. En nu, Rosika, dien die al kwaar ze bij hem afgestuurd aan de kujaren.

0: पेन इलेक्ट्रिक पिया, इलेक्ट्रिक पिया को छोड़कर हम आपको सुनाने को जा रहे हैं वही नहमा जो इन दिनों में काफी हलचल मचा दिया है गैसन वाला। इलेक्ट्रिक पिया को छोड़कर हम चलते हैं हमार मशीनिया की तरफ। अब जरा सोचिए कि कौन है, के है तोर मशीनिया, के है तोर मशीनिया।
1: अरे हमार मशीनिया
0: देवेंद्र सिंह शिवनाथ।

0: Okay. Of jullie moeten mij vertellen. Zullen we wel gaan aanbetalen? Vertel mij wat hij bedoelt met doubles. Is het van... Hamar machine, hamet doubles khawawe hai, hamet chana khawawe hai, dus ghugri khawawe hai. Bedoelt hij dat? Ik weet niet wat hij bedoelt, maar in ieder geval... Ganwa bohut bisaal hai ga, aur ya, inur mein bahut hi hit hai ga. Ujala Radio ke zehri, abhi aapne sunhe hai, aur abhi khashkar aapne sunhe hai. Devinder Singh Siunat ke awaz mein pish kiya gaya hai. And nu...
1: Hey boy, yeah man, are you ready for this one?
0: Brasa fest. Brasa fest. आरे हैं आपके लिए ब्रास एफएस हंगामेदार इवेंट आपके लिए पूरा परिवार के लिए मैच ये हेल गेसिन किंडर टॉट 1 मीटर ग्रेटिस फॉर ऑल अदर ओवरिगे मेंसन या टिकट के लिए चेक ऑन आवर वेबसाइट brasafest.nl और देन हाग के बाजिंदो सुन लीजिए हैव यू एन ओईफार्स पास dan krijg je 50% korting op je entree-ticket aan de kassa. Aan de kassa. Shivam... Shivam Rajaram. Shivam Rajaram, ook aanwezig op Brasa.

एज़रा से शिवम राजाराम के आवाज़ में आपने सुने हैं, पेश किया गया है सुनवालो उजाला रेडियो के जरिए। हम आपको सुनाते हैं थोड़ा सा ये नगमा, और भी खासकर अनुपा भगवान दीन के आवाज़ में। अनुपा भगवान दीन मैट डायमंड्स 2000 ओक अवेसन और ब्रासा, और वो भी आप सुन गुजर रहे हैं अनुपा के आवाज़ में। एंड डाउन हो रहा है अनुपा।

सुजल उमरों को छोड़कर हम आपको ले चलते हैं निजाम वागी डिजाइन की तरफ और निजाम वागी डिजाइन आपको सुनाने वाला है पेश किया जा रहा है उजाला रेडियो के जरिए निजाम वागी डिजाइन

हमारे सभी सुनने वाले को हरि को मेरा प्यार भरा नमस्कार, राम राम, नमस्ते और आदाब। उजाला रेडियो का प्रोग्राम आप लोग सुन रहे हैं। आज इतवार 16 तारीख अगस्त का प्रोग्राम सोंदाग 16 अगस्त। खुद मेरा खलमाओ हमेशा की तरह जिनके घर पर कोई भी खुशियां, जन्मदिन, सालगिरह, विवाह, शादी वाह हो, आप रिको हार्दिक से बधाई और तहे दिल से मुबारकबादी अर्ज किए जाते हैं। जो कोई बीमार या तो लाचार है तो उनकी तंदुरुस्ती के लिए भगवान से प्रार्थना और अल्लाह से दुआ है आप रिकी ताकत और तंदुरुस्ती के लिए। वेस्ट इंडीज का प्रोग्राम बैठक गाना हंगामा यहाँ से आप लोग सुनने को जा रहे हैं हर एक इतवार की शाम की तरह। दो घंटे लगातार आप लोग सुनेंगे वेस्ट इंडीज का प्रोग्राम बैठक गाना हंगामा। मैं हूं सुभाष गोविंद और जहां तक आप लोग हमें सुनते होंगे बस सुनते ही जाइए दिन में 5 बजे तक। या वेल 5 बजे तक आप लोग किसान। अगर आप लोग हमारे प्रोग्राम में हिस्सा लेना चाहेंगे तो उजाला रेडियो का वैसे आपका फोन का नंबर है 020-363-0808 पर आप लोग मुझे ऐप कर सके। हमारे प्यारे सुनो लो, चलिए पहला बैठक गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे तो गाने वाले होंगे स्वर्गीय पंडित राम प्रसाद राम खेलावन जी की आवाज में आप सुनेंगे।

शाबाश शाबाश जो इस तरह से स्वर्गीय पंडित राम प्रसाद राम खेलावन जी के आवास में गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने। अब की बार चलिए प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले साहेब हनीफ रोजन और ये गाना पेश है आम सलाम सहितोष में रॉबी रोजन के लिए।

शाबाश शाबाश। और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने, खास करके द किंग ऑफ बैड गाना देवेंद्र सिंह सेवना जी के आवाज में। और नतुलक सनेसाइल बोले अबेलक का पड़वा स्पार कर है या वेल आई बॉय स्पार कर जी अच्छा। और degene die aan het koken zijn, kook ze allemaal en voor straatjes eet u smakelijk. En Almere met Japper, Sunita en Ruben programma kunnen zoenen. Twee gaan op donker naam.

वल्ली शाबाश शाबाश बोले सपनों में प्यारी सूरतिया दिखा दो आयुषरा से स्वर्गीय रामदेव चैतु जी के वंश में गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने वल सुरीनाम से आए है भैया विनोद दुबे और खास करके धीरज सीताराम के लगे हैं तो दोनों बैठ करके सुने हैं। तो भैया विनोद दुबे ये गाना तुम्हारे नाम है भैया धीरज सीताराम के लिए

शाबाश शाबाश शाबाश, पल पल बीत जाती उमरिया, प्यारा प्यारा बचपन का अवसरों से श्रीमान सत्यानंद रेखा जी के आवास में अभी आप लोग सुने और उजाला रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे हैं वेस्ट इंडीज का प्रोग्राम बैठ गाना हंगामा। और देखा जाए उस दौर में हैंक गोपी प्रोग्राम को बैठकर सुने हैं तो ये गाना तुम्हारे नाम

शबाश शबाश मोरी अतरिया है सुनी एंड बलम नहीं आए। अवसरों से हनीफ रोजन जी के आवाज में गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने, सुरेश और लीला हीरा एंड बारह दरख्त में प्रोग्राम को बैठकर सुने हैं, तो ये गाना आप दोनों का नाम सुरेश एंड लीला हीरा के लिए बारह

शाबाश शाबाश चले पवन के चाल, इस तरह से स्वर्गीय देसी रघु सिंह जी के आवास में गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने। और चलिए अब की बात तो देखा जाए होप दौरा शहर में आनंद मंगरू प्रोग्राम को भी बैठ करके सुने हैं।

पूरे जगत में इस तरह से हारी सिद्धू की आवाज में गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने। हमारे प्यारे सुनने वालों, करीबन 10 मिनट बाकी रहा, 4 बजे में 3 मिनट फॉर फिर, एंड अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे तो खास करके आलमेर शहर में, जहां पर इस वक्त भाई प्रकाश चंद्रिका सिंह जी प्रोग्राम को बैठकर सुने हैं, तो ये गाना तुम्हारे ना भाई जी।

शाबाश शाबाश शाबाश। और इस तरह से स्वर्गीय श्री पंडित अवत बिहारी जगरू की आवाज में गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने, एंड यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे हमारे प्यारे सुनने वालों, आप को शुभ दिन। और

और आज और मेरे शहर में जहाँ पर इस वक्त संत चंद्रिका सिंह का जन्मदिन है और फनहर्त फनहर्त और ये जन्मदिन आपको बेशक बधाइयां शुभकामना परिवार।

0: और जो गाना संता के लिए हम घुमाना चाहते हैं और गाना इस तरह से होना चाहिए। और चलिए द किंग ऑफ बैड गाना देवेंद्र सिंह चिवना जी के आवाज में गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे। और जिस तरह से हमने बता चुके कि आज संता चंद्रिका सिंह का जन्मदिन है, फनहर्थ बधाइयां शुभकामना इस गाना के साथ।
1: हजारों साल जियो हजारों साल।
0: और गनवा ए बोई बोई बोई बोई जोन गाना हम मांगिल बजावे नतुलक अब देश से है नतुलक, ये गाना होना चाहिए यार। और इस तरह से गाना जो आप लोग सुनेंगे और खास करके गाने वाले होंगे द किंग ऑफ बैड गाना देवेंद्र सिंह शिवनाथ जी के आवाज में गाना जो आप लोग सुनेंगे। हमारे तरफ से भी बधाइयां शुभकामना। और चलिए गाना जो प्रोग्राम में हम आपको सुनाते हैं और इस तरह से होना चाहिए द किंग ऑफ बैड गाना देवेंद्र सिंह शिवनाथ जी।

है बिनकोट रावल, तोर विवाह होने वाले हैं, तोर शादी होने वाले हैं, सुनवा लो। तो दीजिए आप फरमाइश ऑफ उजाला रेडियो, 15 फरमाइश, 15 आवाज फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो। दिस खाई बिनकोट रावल, तोर विवाह होने वाले हैं, तोर शादी होने वाला है, नेम कॉन्टैक्ट ऑफ मैट उजाला रेडियो, ईमेल info@ujala.nl, 15 आवाज फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो।

जना रेडियो का प्रोग्राम आप लोग सुन रहे हैं वेस्ट इंडीज का प्रोग्राम बैठक गाना हंगामा। करीबन 11 मिनट वैसे सच को ले 4 बज कर 11 मिनटों पर फिर दूसरा भाग और आखिरी भाग बैठक गाना वेस्ट इंडीज का प्रोग्राम। और चलिए अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे तो राकेश यानकरन की आवाज में, और ये गाना पेश है अलमेर का, अलमेर शहर के रहने वाली निर्मला चंद्रिका सिंह के लिए।

वेल वेल यार ओ गोड़ी मारे कर जुआ हमार अवसर से रकीस हाँ रकीस यान करन के आवास में गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने चलिए अब की बार तो होफ दौरब शहर में जहां पर इस वक्त आनंद मंगरू प्रोग्राम को बैठकर सुने हैं एंड में लच

शाबाश शाबाश, ये वादा करो चांद के सामने कि मुझे भुला ना दूंगी। अवसर से द किंग ऑफ बैड गाना देवेंद्र सिंह शिवनाथ जी के आवाज में गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने तो उसमें राय खरबोस में इस वक्त भाई रॉबी रोजन अपने दोस्तों के साथ बैठ करके प्रोग्राम को सुने हैं। तो चलिए गाना आपके लिए और सभी दोस्तों के लिए।

0: शाबाश शाबाश बाला जमानुआ छोड़ो हमारे नगड़ी। और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुन रहे थे, एंड यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम।
1: ये बात हिरनिया धीरे धीरे चलो।
0: और देखा जाए हार्लेम शहर में, जहां पर सीता भी प्रोग्राम को बैठ कर सुने हैं। सीता और राम के लिए गाना पेश है।

अरे शाबाश शाबाश यार, धीरे रे चलो मोरे बाग के रनिया। आई सरा से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने, और देखा जाए आमसरम तो उसमें भी बैनी राम सरन प्रोग्राम को बैठ कर सुने भैया बैनी। और चलिए तो गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे तो गाने वाले होंगे एक बार फिर द किंग ऑफ बैड गाना देवेंद्र सिंह शिवनाथ जी की आवाज में। वेल हमार मसिनिया

शाबाश शाबाश और इस तरह से स्वर के रामदेव चैत्य जी के आवाज में गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुने यही रोहतरनाम में विकास हरी एंड बेटा प्रोग्राम को सुने हैं अपन काम पे काम कर रहे एंड यू आर उजाला।

अरे शाबाश शाबाश, मेरी पतली कमल, मेरी लंबी बाल, और इस तरह से बिजनवती चैतु जी के आवाज में गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने, वैसे इसका प्रोग्राम बैठक गाना हंगामा, यू आर उजाला रेडियो। अब की बार गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे तो राशि का दिन दयाल के आवाज में और ये गाना पेश है श्रीमान अर्जुन बिहारी के।

0: पहले बदला बदला न हेम हेम लता दीन दयाल जी के वा उसमें गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने और देखा जाए तो भैया हैं गोपी भाई बैठ करके सुने तो भैया हैं गोपी। चलिए गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे तो तुम्हारे लिए गाना पेश है और इस तरह से आप लोग सुनेंगे एंड यू आर उजाला रेडियो का पौने पांच का वक्त है क्वाट 4:05।
1: कारा बने जो अपना
0: वाओ चलन दे यार
1: जो अपना।

और यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे थे फैंस पोलरे में मिला भी प्रोग्राम को बैठ कर सुने हैं। तो उजाला रेडियो का प्रोग्राम ये दूसरा भाग जो बैठे गाना का प्रोग्राम करीबन 10 मिनट बाकी रहा 5 बजे में थोड़ा देर तक और आप लोग के साथ विथ इंडिस का प्रोग्राम बैठक गाना हंगामा। तो चलिए फैंस पोलरे में मिला प्रोग्राम को बैठ कर सुने। आई बोल

और हमारे प्यारे सुनने वालों, चलिए प्रोग्राम में एक आखिरी बैठक गाना जो हम आप लोग को सुनाने वाले हैं, और देखा जाए तो खास करके दिमनजर में फौसिया भी प्रोग्राम को बैठ करके सुने हैं, तो चलिए फौसिया ये गाना तुम्हारे लिए। आई बॉय यू आर उजाला रेडियो का प्रोग्राम, मैसेज का प्रोग्राम, बैठक गाना हंगामा जो आप लोग सुन रहे हैं।

राल वेल यार बहे अखियों की दार, बोले तू कहां जाइए छोड़ के, और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में अभी आप लोग सुने, एंड आखिरी गाना हिसला यांग की दरहाक में भी बैठ करके प्रोग्राम को सुने। और चलिए गाना पेश है हमारे सभी सुनने वालों के लिए जो हमारे साथ दिए अब तक, या वेल आई बोल।

आप सभी सुनने वालों को आशा है कि आज का प्रोग्राम भी जिस तरह से हमने बनाया है वैसे इसका प्रोग्राम बैठक गाना आप लोग को पसंद आए होंगे। आने वाले सप्ताह इतवार को फिर आप लोगों से मिलेंगे। आप लोग मौज से रहिए, अपना इतवार का शाम इतवार का रात्रि मौज से बिताइए। जो भी आप लोग करेंगे प्यार से दुलार से कर लेना, नहीं तो ना करिए। आप लोग मौज से रहिए। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, राम राम, नमस्ते एंड खुदा हाफिज।

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां हैं, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूर योर ईमेल नर info@ujala.nl 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो।

0: अंधेरे का इशारा समझो, अब तेरा दिल का जलाना होगा।
1: तुम बड़े को हो, मुझे जाने दो।
0: जा सकोगी?
1: मुझे जाना होगा।
0: जाओ।
1: छोड़ो भी
0: नहीं।
1: छोड़ो ना।
0: आज की रात तो दिल तोड़ो ना।

ये उजाला रेडियो है। इन्फॉर्मेशन जानकारी के लिए उजाला पॉइंट एनएल।

फिल्म का नाम एक दूजे के लिए। इस गीत को गाई गई है, बनाई गई है, लिखी गई है सिर्फ हिंदुस्तानी फिल्मों के नाम के साथ। मोई खदान तो एक दूजे के लिए फिल्म का नाम, और ये उजाला रेडियो है सुनने वालों। अब पंकज उदास एंड साधना सरगम, फिल्म मोहरा का गीत।

अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राहत फतेह अली खान और ये है उजाला रेडियो। उजाला रेडियो को सुनते रहिए और मधुर मधुर संगीत जो है वो सुनते रहिए उजाला रेडियो पे, और मेरे भी गाने सुनिए, औरों के भी सुरीले गाने सुनिए।

खुशी के साथ गमी है, पैदाइश के साथ मौत। उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मृत्यु समाचार आप सुनिए। आम्स्टर्डम से समस्त परिवार हीरा लाल बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए बीफे को 87 साल के आयु में जीवन तख्त यार और पत्नी श्रीमती मरी हीरालाल उदयराम का पति लड़कन जूलियन और परिवार, ग्लेन और परिवार, नलिनी और परिवार, इरेन और परिवार, हैंक और परिवार, जिम और परिवार, शारदा और परिवार, जॉय और परिवार, योसेफ और परिवार, जेरी और परिवार, शर्मिला और परिवार और स्वर्गीय जॉन और परिवार के पिता आम्स्टर्डम का रहने वाला श्रीमान योसेफ चंद्रभान हीरालाल की मृत्यु आम्स्टर्डम में हो गई है। भान के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे। सूरीनाम में पहले सीदोरे जो वैखदेसा लीली दौरप का रहने वाला था। आम्स्टर्डम से समस्त परिवार हीरालाल बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए बीफे को 87 साल की आयु में जीवन तख्त यार और पत्नी श्रीमती मारी हीरालाल उदयराम का पति लड़कन जूलियन और परिवार, ग्लेन और परिवार, नलिनी और परिवार, इरेन और परिवार, हैंक और परिवार, जिम और परिवार, शारदा और परिवार, जॉय और परिवार, योसेफ और परिवार, जेरी और परिवार, शर्मिला और स्वर्गीय जॉन और परिवार के पिता आम्स्टर्डम का रहने वाला श्रीमान योसेफ चंद्रभान हीरालाल के मृत्यु आम्स्टर्डम में हो गई है। इन्हें लोग भान के नाम से पहचानते और पुकारते थे। सूरीनाम में पहले लेली दौरप देसा सीधो रेजो वह का रहने वाला था। अर्थी से विदाई लेने की मौका है आने वाले बुध के रात में 7 बजे से 8 बजे तक वुंसदाख आफंत फंजी फंतोत अख्तूर ओला जोइत के मुर्दालय फ्रेतरूस कसरात 91 आम्स्टर्डम जोइत में और अर्थी के दाह क्रिया आने वाले बीफे के दिन में 4 बजे दोंदर दखास्तांद फिर यूर किए जाएंगे। वैसखार्द क्रिमाटोरियम ओक मेरवेख 275 आम्स्टर्डम उस दौरप में निवास स्थान पर बैठक नहीं किए जाते हैं। और जानकारी के लिए तार का नंबर है 06-28-41-91-71। सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए उजाला रेडियो समस्त परिवार हीरालाल के दुख में शामिल है।

रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सोते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू जा।

0: You are.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ujala Radio. देश भर में सुनाई देता है FM Plus. तो घर में तो ऑटो में तू बता दे सबको इसे उजाला रेडियो DAB Plus पर देश भर में उजाला रेडियो द क्रोस्ट कैट द बेस्ट उजाला रेडियो.

the rocking and most sensational leader in broadcasting. You are Ujala Radio ka paighama ap sun rahe hai. Phone ka naman administratie par hai 020-409-0807. रेडियो के क्षेत्र पर हर एक कामर काज के वास्ते आप डाल कर सकते हैं शो मार से लेकर शनिवार तक सुबह में 10 बजे से लेकर दिन में 3 बजे तक 020-409-0807 पर। यूआर के सभी सुनने वालों के खिदमत में आपका खादिम शहीद गुलजार का नमस्कार और अस्सलाम वालेकुम। आप हमें जहां से भी सुन रहे हैं, जिस हालात में आप भी हैं, बीमार दुखित या तो लाचार है, आपकी खुशी के वास्ते भगवान से प्रार्थना और अल्लाह से दुआ है। लिए पेश खिदमत है लगातार नॉन स्टॉप म्यूजिक मिक्स मक्स सॉन्ग्स और इस बार डिस्को किंग बप्पी लहरी।

वार के श्रोताओं के मध्य में प्रस्तुत की गई है खैर मकदम के साथ सबसे पहला सिलेक्शन। देखा है मैंने तुम्हें फिर से पलट के, डिस्को किंग बप्पी लहरी की आवाज आपने भी सुने हैं। और मिले जुले संगीत में हम आपको इस बार सुनाने वाले हैं सुरों का बादशाह मोहम्मद रफी साहब, और साथ दे रही है दीवाने नौली द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया लता मंगेशकर। फिल्म का नाम रातों का राजा और गीत का बोल मोहब्बत से तुम्हें देखा मगर तुम न जाने क्या समझे।

मोहब्बत से तुम्हें देखा, मोहब्बत से तुम्हें देखा, मगर तुम न जाने क्या समझे। हम आपको फिल्मी नगमे सुना रहे हैं, लेकिन अब सोच रहा हूँ शायद कुछ लोग हैं जो नाचना चाहेंगे, तो आप सभी के वास्ते, जो लोग नाचना चाहेंगे आपके वास्ते एक लोकल सिलेक्शन हम सुनाने वाले हैं। इस बार है इंडियन टेम्पटेशंस के साथ पर और पुराना गायक विम डमरी की आवाज के साथ, अगर तेरा है तो वाका वाका। एंजॉय दिस सॉन्ग बाय यू आर। हर एक को एक बहुत ही शुभ दिन, मुबारक डिनर्स है यू आर की पूरी टीम की ओर से। इस सिलेक्शन के साथ आप हमारे साथ भी नाचिना, साथ अगर तेरा है तो।

वन ऑफ द फैबुलस सिंगर्स विम डमरी को आपने भी सुने हैं कि साथ अगर तेरा है तो वाका वाका। इंडियन टेम्पटेशंस के साथ पर उजाला रेडियो के जरिए रॉकिंग एंड मोस्ट सेंसेशनल यू आर उजाला रेडियो का पैगाम आप सुन रहे हैं। स्टूडियो में फोन का नंबर 020-363-0808 0008-0008-363-0808। एडमिनिस्ट्रेशन पर नंबर है 020-409-0807 0004-0008-0007 पर आप डाल कर सकते हैं रेडियो के क्षेत्र पर हर काम काज के वास्ते या तो वेबसाइट ujala.nl। इस बार प्रोग्राम में आप सुनिए एक बहुत ही मजेदार सिलेक्शन, लंबा हो

दरकुआ उजाला रेडियो का पैगाम है, फोन का नंबर है एडमिनिस्ट्रेशन पर 024-09-0807। रेडियो के क्षेत्र पर हर एक काम काज के वास्ते आप शो मरसले का शनिवार तक सुबह में 10 बजे से लेकर दिन में 3 बजे तक डायल कर सकते हैं एमस्टरडम शहर में 024-09-0807 पर। मिले जुले संगीत कुछ मिक्स मार्क्स सॉन्ग्स आपके मध्य में प्रस्तुत किए जा रहे हैं। आपका खादिम का नाम है शहीद गुलजार, स्टेशन है उजाला रेडियो और इस बार गायक है द हार्ट ऑफ मिलियंस द माइटी मुकेश जी। हम तो तेरे आशिक है सदियों पुराने, तू माने चाहे तू ना माने।

तो तेरे आशिक है सदियों पुराने, तू चाहे माने चाहे ना माने। द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया लता मंगेशकर और द हार्ट ऑफ मिलियंस द माइटी मुकेश जी की आवाज आपने भी सुने हैं। मिले जुले संगीत आपके खिदमत में, कुछ मिक्स मार्क्स सॉन्ग्स पेश किए जा रहे हैं और इस बार प्रोग्राम में है शैलेंद्र सिंह की आवाज आप सुनेंगे और गीत का बोल गूंजे लगे है कहने।

शरेंद्र सिंह जी की आवाज में आपने भी सुने हैं कि गूंजे लगे है कहने, सुना है तराना प्यार का, कहता है दिल आके मिल ओ मेरी जिंदगी, कहीं तन्हा ना बीत जाए ये दिन बहार का, कुछ इस तरह से सिलेक्शन आपने अभी प्रोग्राम में सुने हैं शरेंद्र सिंह जी की आवाज में। स्टेशन है यू आर उजाला रेडियो।

याद हो गई है जवान। कुछ मिले जुले संगीत मिक्स मैक्स सॉन्ग्स आपके मध्य में प्रस्तुत किए जा रहे हैं आज इस दिन का पैगाम में। आप हमें जहां से भी सुन रहे हैं, आप सभी खुश रहे और सलामत रहे और प्रोग्राम को बेशक सुनते रहना और सुनते ही जाना। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तू देना साथ मेरा, वो मेरे हम नवाज़।

0: कैसे हो?
1: 24/7
2: उजाला
3: उजाला
2: उजाला हो जाए प्रोग्राम में एक बैठक गाना सिलेक्शन मोहे लागी रे लागी रे लागी जुल्मी उमरिया समरिया।

राजूबाड़ के सभी सुनने वालों के वास्ते, आप नाचने वालों के वास्ते, के मोह लगी रे लगी रे लगी जुल्मी उमरिया सवरिया सवरिया में गिर गिर जाओ। इट्स द लीडर इन ब्रॉडकास्टिंग, यू आर उज्जला रेडियो का पैगाम, तू जाने है तो। और इस बार है अमित कुमार और द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, लता मंगेशकर, फिल्म का नाम लव स्टोरी। गीत का बोल के कैसा तेरा प्यार, कैसा गुस्सा है तेरा, तौबा सनम तौबा सनम।

द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया लता मंगेशकर और अमित कुमार की आवाज आपने भी सुने हैं कि कैसा तेरा प्यार कैसा गुस्सा है तेरा तौबा सनम तौबा सनम। हम आपको इस बार प्रोग्राम में फिर से द नाइटिंगेल लता मंगेशकर जी को सुनाने वाले हैं और इस बार है इनके पिताजी यानी अमित कुमार के पिताजी द मैन विद द एवरग्रीन वॉइस किशोर कुमार। तेरे मेरे मिलन की ये रहना।

0: मेरे साथ हमेशा धोखा होता है। अभी मैं देख रहा हूँ कि ये गाना सिर्फ 2 मिनट का है, ये तो नहीं हो सकता है। हम आपको आगामी में फिर से ये सिलेक्शन एक बार फिर सुना देंगे। विजय का और सिलेक्शन, हम आपसे फिर मिलते हैं। ये नहमा अर्ज है कभी कभी नामक फिल्म से, तेरे फूलों जैसा।
1: Live vanuit de hoofdstad. Uzana Radio. Brazzaville, zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Gia Event Center mee. Super early bird tickets voor fase 1 sold out. Uitverkocht, Tujan het toch. Super early bird tickets voor fase 2. Abituk, to Garitseke heet. Nog 6 dagen te gaan, Tujal Dikar. Wachtie, wachtie, nakker. Koop je tickets voor fase 2. Super early bird tickets. Via brazzaville.nl. En Den Haag Kibazindo. Heb jij een ooievaarspas? Dan krijg jij 50% korting aan de kassa. Brazzaville.nl. Natje toe. Hatunatje toch? Yes, yes. Brazzaville mee. Get ready for the hottest Hindustani event of the year.

0: उजाला रेडियो है सुनने वालों, और आरंभ किया जा रहा है साप्ताहिक प्रोग्राम गीत और गजल की दुनिया। आपके लिए बना रहा हूं बहुत प्यार के साथ। और इस प्रोग्राम में गीतों और गजलें जो हम सेलेक्ट करके आपके लिए लाते हैं, तो हम बातें कम करते हैं इसलिए ताकि प्रोग्राम को आप बहुत ही इत्मीनान से सुन सके। और चलिए पेश है तलत अजीज की आवाज में पहली गजल आज।
1: फिल्म का नाम अदालत, वक्त सन जो है 1958, मुझे पैदा होकर 3 साल हुए हैं। और ये गजल राजेंद्र कृष्ण साहब की है, लता जी की आवाज। मिकी यहां पर हो तुम,

उस मोर से शुरू करे फिर ये जिंदगी, हर शय जहां हसीन थे हम तुम थे अजनबी। जगजीत और चित्रा सिंह से आप सुने प्रोग्राम गीत और गजल की दुनिया उजाला।

शराबी नहीं, फिर भी कोई पिलाए तो मैं क्या करूं। पंकज उधास जी की आवाज में सुंदर गजल को आप अभी सुने।

बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं, तुझे ऐ जिंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं। जगजीत और चित्रा सिंह से आप सुनिए।

पर्दा किया, ऐ कफन तूने तो शर्मिंदा किया। पंकज उधास की आवाज में आप सुने उजाला रेडियो पर गीत और गजल की दुनिया, जो आपके साथ और हजारों लोग भी सुनते हैं इस वक्त। हाँ

तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी है। मेहदी हसन की आवाज में आप सुनिए, गुलाम अली साहब हिस्सा ले रहा है।

गम ने मारा, ये कहानी फिर सही। किसने तोड़ा दिल हमारा, ये कहानी फिर सही। गुलाम अली साहब की आवाज़ में गज़ल को आप सुने। और प्रोग्राम का इस हिस्सा में, हाँ प्रोग्राम का इस हिस्सा में एक आखिरी गज़ल आप सुनेंगे, लेकिन उदास मत होना। इसके बाद हम प्रोग्राम का दूसरा भाग लेकर के और हाजिर हो जाएंगे।

ये उजाला रेडियो है और इसी के साथ आरंभ किया जा रहा है प्रोग्राम गीत और गजल की दुनिया। प्रोग्राम गीत और गजल की दुनिया, गीतों और गजलें के साथ। और सुनने वालों, आज का प्रोग्राम में सबसे पहला फनकार होंगे पंकज उदास जी, उनकी आवाज़ में सुनिए।

आप जिनके करीब होते हैं वो बड़े ही खुश नसीब होते हैं। आप गजल को सुने पंकज उदास जी की आवाज़ में।

तस्वीर बनाता हूँ, तस्वीर नहीं बनती। जगजीत सिंह की आवाज में आप सुने और ये उजाला रेडियो है। प्रोग्राम का नाम है गीत और गजल की दुनिया। ये वही प्रोग्राम है जिसमें हम बातें कम करते हैं ताकि आप इत्मीनान से प्रोग्राम को सुने और लुफ्त उठा सके।

इस सोच में बैठा हूँ, क्या गम उसे पहुंचा है। चंदन दास जी की आवाज में आप सुने।

शम्मा जलाकर ताजमहल में आ जाना जब आंचल रात का लहराए तो। और आप सुने नीना और राजेंद्र मेहता से। उजाला रेडियो है ये प्रोग्राम गीत और गजल की दुनिया।

मोहब्बत क्या समझा, तुम दिल का तड़पना क्या जाने। तलत अजीज की आवाज़ में गज़ल को आप सुने, एल्बम आशियां से या तो आशिकाना से, हाँ आशिकाना से निकाला हुआ प्रोग्राम गीत और गज़ल की दुनिया आपके साथ, और हज़ारों लोग सुन रहे हैं। और हम तो ये हमेशा कहते हैं कि हज़ारों लोग सुने या ना सुने, आप जो सुन रहे हो

का आने को है। जगजीत सिंह की आवाज में आप सुने और अब हिस्सा लेंगे पंकज उदास के साथ अनुराधा पौडवाल जी।

ये फूल कलियां बहार खुशबू तेरे ही जलवों में ढल गई हूँ। अनुराधा पौडवाल के साथ पंकज उधास से गीत आप सुने उजाला रेडियो पर, और प्रोग्राम का नाम है गीत और गजल की दुनिया। अब हिस्सा लेंगे मसूद राणा जी।

हम सफर आज की ये रात नहीं भूलेंगे। गीत आप जो सुने, देखा जाए हाँ, मसूद राणा जी की आवाज में। उजाला रेडियो का प्रोग्राम गीत और गजल की दुनिया, और आप जो सुन रहे हैं ये हमारी खुश नसीबी है।